0: एफएम अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँलाई स्वागत छ। अबको करिब करिब एक घण्टा म प्रस्तोता युवेन्द्र यो कार्यक्रममा यहाँलाई केही सुमधुर भजनहरू सुनाउनेछु।
2: सुदामा और कृष्ण की मित्रता के चर्चे तो सबने सुने ही हैं, लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुंच गए और मथुरा नरेश बन गए, सुदामा तो वहीं रह गए। वही गरीबी, वही दरिद्रता। पत्नी ने एक दिन समझाया कि जाओ, तुम्हारे बचपन का दोस्त तो अब राजा बन गया है, जाके कुछ मदद ले लो, हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत संकोच किया सुदामा ने, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पे चल दिया मथुरा की ओर।

जय श्री राधे। साथियों, ये कन्हैया जी के बचपन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जिसमें हमेशा की तरह कन्हैया अपनी आदत के अनुसार एक बड़ी अनोखी जिद पकड़ लेते हैं। होता कुछ यूं है कि उनके एक सखा जो उनसे 10 साल बड़े होते हैं, उनका विवाह तय हो जाता है और बड़ी धूमधाम से शादी हो रही होती है, जिसे देखकर 7 वर्षीय भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी मैया से अपने विवाह की जिद कर बैठते हैं और कहने लगते हैं,

बाल कृष्ण के मुख से विवाह जिद पहले तो मैया को बड़ा ही आनंद देता है। वो बहुत देर तक अपने लला को देखती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि मेरा लला तो गंभीर हो गया है, तो मैया उसे समझाते हुए कहती हैं,

मित्रों, माँ की बात सुनकर भगवान बालकृष्ण जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो तो सोच रहे थे कि हमेशा की तरह इस बार भी मैया को तुरंत मना लेंगे, मगर मैया जी तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। बस यही सोचते हुए भगवान कृष्ण पैतरा बदलकर मैया को समझाने लगते हैं।

हो गया, ऐसी जिद क्यों पकड़ कर बैठ गया है? और ये भी सोचती हैं कि लला कह भी नहीं रहा कि बड़ी बड़ी गौएं चरा कर लाता है, अब इसे क्या जवाब दूं? इधर माँ के मन की बात जानकर अंतर्यामी भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि आज तो मैया दुविधा में फंस गई। लेकिन तब मैया लाला मदन गोपाल की तरफ देखती है।

साथियों, मैया की इतनी सी बात जब नंदलाला ने सुनी तो वो समझ गए कि मैया के आगे अब दाल गलने वाली नहीं है। सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं, मामला अपनी जगह पर जम जाए। उधर अपने सुकुमार की दशा देखकर माता यशोदा मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी, मगर ये भी सोच रही थी ये नटखट नंद गोपाल मोर मुकुटधारी मेरा लाडला इतना शीघ्र मानने वाला तो नहीं है। कि तभी भगवान कृष्ण पैतरा बदल कर बोलते हैं,

लाला की ऐसी मजेदार बातें सुनकर मैया यशोदा और अधिक प्रसन्न हो जाती, किंतु अपने छोटे से कान्हा की हाजिर जवाबी से उन्हें लग रहा था कि उनका लाला बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा ही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लाला को कैसे समझाएं कि वो अभी विवाह के योग्य नहीं है। उधर भगवान को भी लग रहा था कि अब माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, अब इसे और परेशान नहीं करना है। वो माँ से क्षमा मांगने ही वाले थे कि माता जी कहने लगी,

मैया के ऐसे वचन सुनकर कन्हैया जी को पता चल चुका था कि मैया अब मानने वाली नहीं है। सो बेचारे मोर मुकुटधारी देवकी नंदन थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें परेशान होता देख मैया को लगा कि शायद अब मेरे लाला ने हार मान ली है और अब ये जिद छोड़ देगा। मगर तभी भगवान बंसीधर हल्के से मुस्कुराए और शरारत भरी नजर से मैया की तरफ देखकर बोले, गेंद गिरी थी जब जमुना में, सुन मैया जी बात हमारी,

अपने लाला का तर्क सुनकर मैया सोचने लगती है कि हाँ, ये बात तो पूरी नगरी जानती है कि मेरे लाला ने उस अत्याचारी दुष्ट कालिया का सर्वनाश कर दिया, जिसने अपनी दहशत फैला रखी थी और वो जिसको पकड़ लेता था जिंदा ही खा जाता था। लेकिन फिर भी अभी मेरा लाला तो बहुत छोटा है ना, उसका विवाह कैसे करूं? और वो लाला को देखकर कहती है,

0: भक्ति में बस।
1: अवस्थ आदरणीय श्रोता, प्रस्तुति भजन का साथ साथ ही कार्यक्रम को भने निर्धारित समय यही पूरा भएको हुँदा अब अहिलेलाई छुट्टिने समय। कार्यक्रमबाट प्रस्तुता म युवेन्द्र बिदा माग्दछु। नमस्कार।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: मैं और मेरी तनहाई।
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: घर होस या मंदिर, उषा 104.8

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।
1: Jaun na jaun,
2: Shrestha tailoring.
1: Yeah, baby, yeah.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM AJ 104.8 megahertz.

0: एफएमएजे 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन लिँदै हुनुहुन्छ केही सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: सीन नंबर 41, नाइट ड्राइंग रूम। बिल्कुल ऐसा ही कमरा है, ऐसा ही सोफा सेट, ऐसी तूफानी रात। अब जोर से बिजली चमकती है, बारिश हो रही है, और ठीक जिस जगह तुम बैठे हो एक खतरनाक स्मगलर बैठा है, एक खूनी, और ठीक उसके सामने इस जगह जहां मैं बैठा हूं एक और इंसान बैठा है, एक ऐसी हस्ती जिसने कसम खाई है कि वो इन काले धंधे करने वालों का मुंह काला कर देगा।
2: तुम जानते हो रवि, वो हस्ती कौन थी? वो थे मेरे पिताजी।
3: क्या? तुम्हारे पिताजी?
2: हाँ रवि, वो बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे, लेकिन अचानक वो स्वामी के जंगल में फंस गए। लेकिन जब उन्हें एक दिन इस पाखंडी की असलियत का पता चला तो वो तड़प उठे। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन सारी दुनिया के सामने स्वामी की असलियत का पर्दाफाश कर देंगे।
3: फिर क्या हुआ?
2: फिर वही सीन नंबर 41, नाइट ड्राइंग रूम। जान हथेली पर रखकर मेरे पिताजी स्वामी के सामने जा पहुंचे और ठीक इसी तरह बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगे कि अचानक खिड़की के पीछे खतरनाक शैतान का साया पड़ता है।
1: और इससे पहले कि वो अपने सामने बैठे हुए उस खतरनाक स्मगलर की धज्जियां उड़ा दे, एक तेज चाकू साया के हाथ में पड़ता है और कुछ देरों में जाते हो क्या होता है।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

प्रिय भक्तों, आज हम सांवरे के दीदार की बातें करेंगे। सांवरे का दीदार जिसको हो जाए वो खुद सांवरा हो जाता है, सांवरे की छवि उसमें आ जाती। तो आज हम सांवरे का दीदार करेंगे और अपने को सांवरे में ही विलीन करेंगे।

0: मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली,
1: तुम मन में ग्लानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है।
0: कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी।

0: कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, टेया याने उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है,
1: हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्राणों से भी प्यारी समझना।
0: पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा,
1: कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना।

कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति अर्थात कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल ही होगा। कैकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जाकर सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है।

श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो।

कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकई की यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो?

हे रानी किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं।

राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना।

हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैंकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।

अपने जी में कैकई को सूर्य जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्रों और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह लग रहा है।

राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों की धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से ये रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़

0: के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है, ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई अर्थात मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बास को छोड़ने के लिए कुलही अर्थात आंखों पर की टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बास छोड़ना चाहती है।
1: मास पारायण 13वां विश्राम।

हे प्राण हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है।

इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? अर्थात क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया।

जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी अर्थात मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा, दोनों भाई अर्थात भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था।

राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा? हे प्रिये, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।